मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभरता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दिल तमने अपवानी मारी क्या ना छे, लागणियों ने मापवानी मारी क्या ना छे। तू प्रेम आपे के जख्मोनी भेट, जे मळे ते स्वीकारवानी मारी क्या ना छे। तारी खुशी माज मारी खुशी रहेली छे, तू जीते दाव तो हारवानी मारी क्या ना छे। तू करी लेजे खात्री कदी मारा प्रेमनी, हथेळी मां दिल मुकवानी मारी क्या ना छे। हाथ जालो तो मझधारे ना छोड़ी देशो, मौत सुधी चालवानी मारी क्या ना छे।
3: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: ભારતના પ્રધાનમંત્રીએ દેશમાં જે સૌર ક્રાંતિનો પ્રારંભ કર્યો છે તેની અસર હવે ચારે કોર દેખાવા લાગી છે। ભારતમાં એક પછી એક 30 લાખથી વધુ પરિવારોની અગાશી પર સોલર પેનલ લાગી ચૂકી છે। તમે પણ આ ઉર્જા ક્રાંતિનો ભાગ બનો। પીએમ સૂર્ય ઘર મફત વીજળી।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: इतनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

लांबो डगलो मुछो वाकड़ी सिरे पाघड़ी राती अरे लांबो डगलो मुछो वाकड़ी सिरे पाघड़ी राती अरे बोल बोल तो थोड़ी थोड़ी खेल सभी लो गुजराती अरे तन छोटू पर मन मोटू अरे तन छोटू पर मन मोटू छे खमीर बनती जाती अरे भले लाग तो घोड़ो।

इश्क मुश्क न छुपे बावड़े यार, दिल की तख्ती पे नाम लिखा तेरा गहरा, कातिल आँखों

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो अपनों के बिना अधूरी लगती है।
3: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
3: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडेय, संजय मारकंडेय और बेबी किट्टू का।
3: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
2: जी।
3: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
2: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: गाँव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।

0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
1: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
0: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
0: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
1: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
0: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
1: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है?
1: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
1: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
1: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
1: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जांच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
0: जी,

प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: जा रहा कौवा अपनी रोटी गवा बैठा ना।
1: क्यों भला?
0: क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओं अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: तुम लोगों ने ये क्या किया?
1: कोचू मंगला,
0: तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाव बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
2: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
3: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई, उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
4: मंगला
5: हाँ?
4: देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
5: ठीक है।
4: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना?
5: हाँ हाँ।
4: उठाकर मुझे दे।
5: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
4: हाँ।
5: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
2: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
4: ये हाँ, ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
5: अरे वाह।
4: और ये इसकी पूंछ।
5: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
4: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
5: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
4: ओ, बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
5: ठीक है।
4: हाँ, अब बना।
3: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी के उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
5: भाई हा? अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
4: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
5: ठीक है।
4: चल। चल चल चल चल, हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
5: हाँ, ठीक
4: चल,
2: चल। कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
6: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने। देखो तो सही, पूछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
3: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
7: कहाँ है कोचू और मंगला है?
8: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था, आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहाँ रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन ये भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, माँ से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए। फिर क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था, सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती? त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए।
1: अच्छा किया जो आप आए।
0: आपका स्वागत है। आपके यहाँ सब कुशल क्षेम तो है?
2: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
2: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई, विद्वान नीलकांतन भट्टा तिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
2: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
2: आप ऐसे

0: व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
1: आप निश्चिंत हो जाएं, समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।
2: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है, इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। ये हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
3: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
4: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
4: जी।
2: रवि वर्मा यही करने लगे, तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेनसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेनसन,
5: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हो तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
5: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा, मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
3: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
5: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
3: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली, लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में

एक बिदन बुरकी ने शाम समय भसवा लाग्या फसवा लाग्या अटकेज नहीं अने भसता भसता ये लोग झगड़ी पड़ा।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, कहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: आ योजना थी तमारू घर साचा अर्थ मां सूर्य घर बनी जशे, एटले के लाइट बिल साव जीरो। इतलू ज नहीं, जो जरूरियात करता वधु विजली पैदा थशे तो तमे तेने ग्रीड मां वेचीने वधारानी कमाणी पण करी शकशो। तो पछी राश एनी जुओ छो, आजे ज रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

पैनल ने। मैं कह दूं वाह, आ स्कीम तो खरेखर जोरदार छे हो भाई। पीएम सूर्य घर मफत वीजड़ी योजना जोड़ावा माटे रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 एफएम रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।
1: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: हेलो पालन बोर्ड 90.4 मेगाहर्ट्ज पर हूँ छू आरजे एआर। आप सबनो दोस्त, आप सबनो होस्ट बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केलवणी मंडल संचालित आ पालनपुर शहर ना समुदाय ना आवाज समा रेडियो पालनपुर पर हूँ आरजे एआर लईने आवु छू गुजराती भाषा नु साहित्य। कितलीक रोचक, अद्भुत, हकारात्मक, ऐतिहासिक संस्कृति ने अने आपना समाज ने एक साची दिशा आपनारी घणी बधी सुंदर मजानी वार्ताओ लईने आ बधी वार्ताओ माथी, आ बधा कथानक माथी, नवलकथाओ माथी चोक्कसपणे तमारा हृदयने अने आवनारी पेढ़ीने आपना गुजराती भाषाना सौंदर्यनी साथे आपना समाज जीवननी पण एक ओळख मळती रहेशे। हमणा हूँ आप सौने सौम्य तेजस्वीनी पुस्तक जेना लेखक छे डॉक्टर गिरीश ठाकर तेमानी तेओए ज्यारे ओएसडी तरीके सोमनाथ युनिवर्सिटीमां काम कर्युं हतुं त्यारनी पोताना वांचननी विचारनी अने आसपासना स्थळोनी जे पण कथाओने माणी छे, समझी छे, विवेचन कर्युं छे तेने वार्ता स्वरूपे रजू करी छे। तेमानी 1-5 प्रकरणनी वार्ताओ आपणे माणी चूक्या छीए अने हवे माणीशुं प्रकरण 6 मृत्यु मरी गयुं रेलोल। सोमनाथ प्रभासथी आश्रे 30 किमी दूर व्रजनी नदीना किनारा पर भगवान धन्वंतरीनो सुंदर आश्रम आजे पण विद्यमान छे। नदीनुं खळखळ वहेतुं वहेण आसपासना अरण्यमांथी अनेक वनौषधिओने सौरभने लई वहेती सुगंधित हवा अने अनेक प्रकारना पंखीओना कलरवती संगीतमय बनतुं वातावरण आश्रमथी तद्दन नजीक तक्षकनी गुफा अने बाजूमां घीघूर वडलो जेना सौथी ऊंची डाळीना पान लीला नहीं पण सफेद जोवा मळे छे। विराम बाद पर मारी साथे जोड़ायेला रहो अने सोमनाथनी पृष्ठभूमिनी वार्ताओने माणता रहो। मस्त रहो, व्यस्त रहो ने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर।

युवक विष्णु प्रभाव के गर्व गौरव ये छोड़ी दो तेवू कहे छे। नागराज अने साधन छो तो साधन रहो तमे। त्यारे नागराज जवाब आपे छे, उद्दंड थता जुओ छो विप्रवर्म तमने मारा झेरनी तीव्रतानो अणसार नथी लागतो। एक बिंदु पण जीवने पृथ्वी लोक छोड़वा विवश करी दे त्यां तमे शू करशो। तमे सांभळी रह्या छो रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आरजे एआर ना स्वरमां सौम्य तेजस्वीनी पुस्तकना अंशोने। युवक जवाब आपे छे, नागराज हूँ पण धन्वंतरीनो शिष्य छु। धन्वंतरीए चींधेल औषधना प्रभावनो अणसार तमने पण नथी। गमे तेवा झेरनुं मारण अहींना औषधमां छे। अलम दर्पेण, नागराज हवे गुस्सामां आवी गया हता। पोताना प्रभावनी शक्तिने अवगणतो आ युवक तेमने उद्दंड लागतो हतो। तेमणे विचार्युं, आ युवकने मारा विष प्रभावना दर्शन करावा ज पड़शे। हे मूर्ख, शुं समझे छे?

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: इस लोकगीत विच एक पंजाबी मुटियार अपने सहुरे घर दीआं गल्लां दसदी है।

भाई नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। आज फिर से हम लेकर आए हैं अगली बात जहाँ पे खत्म हुई थी उससे आगे की बात। ये जो आत्मकथा है वो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने, तो शुरू करते हैं आगे। चपरासी का संकेत पाते ही मैं कमरे के भीतर चला गया और जोर से गुड मॉर्निंग झाड़ दी। मुझे भय था कि यदि हिंदुस्तानी भाषा में बात की तो बिल्कुल गधा समझा जाऊंगा। दिल्ली के दफ्तरों के संक्षिप्त अनुभव से मैं जान गया था कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी यहाँ अंग्रेजी भाषा का राज्य है। आप जब तक उर्दू या हिंदी में बातचीत करते रहेंगे दफ्तरी लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जो ही अंग्रेजी में दांत दिखाएंगे त्यों ही पलट कर आपकी बात सुनेंगे, जैसे आप सीधे उनके ननिहाल से चले आ रहे हो। और बात सुनते समय ऐसे मोहिनी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर होगी जैसे काम आपको नहीं उन्हें आपसे है। चेयरमैन साहब का रंग सांवला, कदनाटा और चेहरा बड़ा गंभीर था। उनकी आंखों से ऐसी चालाकी और दूरदर्शिता टपक रही थी जो कम से कम 5-6 इलेक्शन लड़ने के बाद ही आंखों में आ सकती है। आदमी बड़े घाक थे, इसीलिए एक गधे को कमरे में आते देख कर केवल क्षण भर के लिए चौंके, फिर तुरंत संभल गए और इस प्रकार बातचीत करने लगी जैसे आयु भर अंग्रेजी बोलने वाले

0: काम पड़ता रहा हो।
1: तशरीफ रखिए,
0: उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। मैंने कहा,
1: अगर मैं तशरीफ रखूंगा तो आपकी यह आराम कुर्सी टूट जाएगी, इसलिए खड़ा ही रहूंगा। चेयरमैन साहब मुस्कुराए क्योंकि मैंने ठीक बात कही थी। क्षण भर के बाद फिर बोले, आपको यह स्वांग भरने की क्या जरूरत थी? आप सीधे साधे कपड़ों में भी तो मेरे पास आ सकते थे।
0: मैंने कहा, हुजूर यह स्वांग नहीं वास्तविकता है।
1: खैर अपना अपना शौक है, चेयरमैन ने किंचित क्रुद्ध होकर कहा, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? और जब से यहाँ दिल्ली में एक महाशय ने दिन में लाल टेन और घंटे लेकर इलेक्शन लड़ा है, मैंने हर प्रकार का आक्षेप करना छोड़ दिया है। आप भी चाहे तो गधे का स्वरूप धरकर इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर इस तरह आपको अधिक वोट मिलते हैं तो क्या हानि है?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए रेडियो।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: हुजूर, मैं कोई बहुरूपिया नहीं हूँ, सचमुच एक गधा हूँ। मेरी बात का विश्वास कीजिए। चेयरमैन साहब को अब भी विश्वास नहीं आया। बोले, छोड़िए इन बातों को। मैं आज तक 6 इलेक्शन लड़ चुका हूँ और कभी हार नहीं खाई। मैं सब जानता हूँ। खैर, आप बताइए, आप कौन से वार्ड से आए हैं?
1: जी, अभी तो कृष्णनगर घाट से आ रहा हूँ।
0: तुम?
1: चेयरमैन ने सिर हिलाकर कहा और अपनी चंदिया के गिर्द सफेद बालों पर इस तरह हाथ फेरा जिस तरह फिल गृहस्थी में दुखिया बाप किसी विपत्ति में गिर जाने पर भिड़ता है।
0: तो आप कृष्णनगर वार्ड से खड़े हुए हैं? अच्छा बताइए, कौन सी पार्टी ने आपको खड़ा किया है? कांग्रेस ने, जनसंघ ने, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने, कम्युनिस्टों ने? मेरा मतलब यह है कि आप किस पार्टी के उम्मीदवार हैं?
1: मैंने कहा, जी मैं तो आपकी कृपा दृष्टि का उम्मीदवार हूँ। चेयरमैन साहब खूब मुस्कुराए, समझ गए कि किसी बहुत चालाक

0: आदमी से पाला पड़ा है। बोले,
1: अब आप बनिए नहीं, साफ साफ बताइए क्या काम है। अगर मुझसे कुछ हो सका तो जरूर करूंगा, मगर एक शर्त है, अगर आप इलेक्शन जीत गए तो चाय की पार्टी।
0: देखिए, मैंने टोकना चाहा, लेकिन वे बोलते ही चले गए।
1: चाहे किसी पार्टी की ओर से जीते, चेयरमैन के पद के लिए वोट मुझे को देना होगा। लाइए हाथ लाला संतराम जी।
0: उन्होंने हाथ मांगा, मैंने अपना कान आगे बढ़ाया। चेयरमैन साहब ने जोर जोर से मेरा कान दबाया तो उन्हें मालूम हुआ कि यह तो सचमुच गधे का कान है, किसी बहरू पिए का लिबास नहीं है। बहुत घबराए, सिगार उनके मुंह से छूटकर मेज पर रखे कागजों में जा गिरा। दूसरे ही क्षण कागजों में आग लग गई। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर के साथ।

0: देखिए, मैंने क्षमा याचना करते हुए कहा, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि मैं गधा हूँ, मगर आप मेरी बात सुनते ही नहीं। चेयरमैन ने आग बुझाते हुए क्रोधावेश में कहा, मैंने आपको लाला संतराम समझा था, कृष्णनगर का उम्मीदवार। मैंने पूछा, क्या मैं आपको लाला संतराम दिखाई देता हूँ? वह बोले, कुछ लोग बाहर से गधे दिखाई देते हैं, कुछ लोग भीतर से गधे होते हैं। मैंने समझा, संभव है आप भीतर बाहर दोनों ओर से गधे ही हो, तो मुझे अपनी चेयरमैनशिप के लिए बहुत जल्दी वोट मिल जाएगा। लेकिन ओह, तुमने मेरा कितना समय नष्ट किया है। मैंने कहा, आपने मेरी बात तो सुनी नहीं, मैं तो यहाँ रामू धोबी के गरीब बीबी बच्चों। चेयरमैन ने घंटी बजाते हुए कहा, इस समय तुम मुझसे कोई बात न करो, चाहे दिल्ली के सारे धोबी मर जाए। देखते रही हूँ कैसी आग लगी है। आग सचमुच भड़क रही थी। चेयरमैन ने घंटी बजाई, जल्दी से फायर ब्रिगेड वालों को टेलीफोन करवाया। मैंने भी कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में खड़े होकर हाँक लगाई। थोड़े समय के बाद ही टंडन की आवाज़ों के साथ फायर ब्रिगेड के दो इंजन आ पहुँचे। उन लोगों ने सबसे पहले तो मुझे वहाँ से लात मार कर निकाला, फिर आग बुझाने लगे। मैंने सोचा, यहाँ रहूँगा तो संभव है आग लगाने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया जाऊँगा। तुरंत वहाँ से सरपट भागा और सीढ़ियों के नीचे आकर ही दम लिया, क्योंकि अब लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। नीचे आकर इंक्वायरी में एक बूढ़े परंतु अत्यंत हितैषी क्लर्क ने जान पहचान हुई। उसे रामू की पूरी कथा सुनाई। बूढ़े क्लर्क की आंखों में आंसू आ गए। उसने अत्याचारी समाज, क्रूर जीवन व्यवस्था और पूंजीवाद को लाखों गालियां सुनाने के बाद धीमे से मेरे कान में कहा, अगर तुम 2 रुपये मुझे दो तो मैं तुम्हारा प्रार्थना पत्र लिखकर पुनर्वास विभाग के दफ्तर में सहायता के लिए भिजवाए देता हूँ। मैंने कहा, मैं तो धोबी का गधा हूँ, न घर का न घाट का, मेरे पास 2 रुपये कहाँ। और फिर तुम जानते हो, 2 रुपये में तो 2 मन घास आती है, 6 शेर बाजरा, 3 शेर चावल, लेकिन दमे का 1 ही इंजेक्शन आता है। क्लर्क ने बड़ी उदासीनता से खांसते हुए कहा, और मुझे दमे का रोग है, हर रोज 1 इंजेक्शन लेना पड़ता है। बूढ़ा क्लर्क उदासीनता पूर्वक खांसता रहा और मैं वहां से सटक आया। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर के साथ।
1: इतनी सी बात

0: अगेन आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। पूछते पूछते आखिर में पुनर्वास विभाग के दफ्तर में पहुंच ही गया। दफ्तर में घुसते ही एक बहुत बड़ा सजा हुआ कमरा नजर आया, जिसके बीचों बीच एक बहुत बड़ी तिपाई पर बड़े गुलदान में सुंदर फूल खिले हुए थे। एक कोने में टेलीफोन एक्शन लगा था, जिसके पास एक अत्यंत सुंदर लड़की अपने नाखून रंगने में लीन थी। टेलीफोन एक्सटेंशन की मेज पर लिपस्टिक और क्रीम पाउडर की डिबिया इस प्रकार बिखरी पड़ी थी कि मैंने सोचा मैं गलती से पुनर्वास विभाग के दफ्तर में आने की बजाय मैक्स फैक्टर की दुकान में घुस आया हूँ। अतएव क्षमा मांगकर मैं वापस लौटने को ही था कि लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर बड़ी प्यारी नजरों से मेरी ओर देखते हुए कहा, यस प्लीज। मैंने झिझकते हुए कहा, मैं सहायता के लिए आया हूँ। लड़की ने स्विच दबाया, टेलीफोन पर बोली, राम लुभाया, एक आदमी तुमसे मिलने आया है। टेलीफोन बिगड़ा हुआ था या जाने क्या बात थी, जो कुछ भी वो सुनने वाला और सुनाने वाले दोनों की आवाज़ें टेलीफोन पर स्पष्ट सुनाई दे रही थी। जब लड़की ने राम लुभाया से कहा कि एक आदमी तुमसे मिलना चाहता है, तो उधर से आवाज़ आई, मैं इस समय लस्सी पी रहा हूँ, उसे फर्स्ट क्लर्क के पास भेज दो। लड़की ने अपने होठों पर लिपस्टिक लगाई और फर्स्ट क्लर्क को टेलीफोन किया।
1: कौन?
0: उधर से आवाज आई, मैं हूँ निर्मला।
1: हाय मेरी जान,
0: फर्स्ट क्लर्क ने उधर से भैंस की तरह आग भरी। सुनो, निर्मला बोली, एक बेचारा गरीब,
1: फर्स्ट क्लर्क

यहाँ सभी गरीब आते हैं। तुम सुनाओ, तुम्हारी आवाज इतनी प्यारी क्यों है? जी चाहता है सुनता ही चला जाओ। निर्मल, निम्मी, आज शाम को सिनेमा? लड़की ने टेलीफोन बंद कर दिया। उसके बाद उसने अपने गालों पर गाजा लगाया और अब के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को टेलीफोन किया। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ने कहा, नहीं मिस निर्मला, इस समय मेरे पास कोहाट के शरणार्थी सरदार दरबार सिंह मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर बैठे हैं। बिचारों का सब कुछ लूट गया है। इस समय इनके 1 लाख के क्लेम की पड़ताल कर रहा हूँ। उन्हें आगे किसी दूसरे के पास भेज दो। मैं तो इस समय बहुत मशरूफ हूँ। बहुत अच्छा, कहकर लड़की स्विच गिराने वाली थी कि उधर से आवाज आई, हेलो निर्मला। जी भाई, वो साड़ी तुम्हें पसंद आई? डिप्टी सुप्रिटेंडेंट पूछ रहा था। जी वही पहने हुए हूँ, निर्मला जरा शौकी से बोली और स्विच गिरा दिया। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर के साथ।

0: जी वही पहने हुए हूँ, निर्मला जरा शौकी से बोली और स्विच गिरा दिया। उसके बाद आईने में उसने अपना मुंह देखा, मुस्कुराई, चेहरे पर पाउडर लगाया और स्विच दबाकर सुपरिटेंडेंट को टेलीफोन किया। जी देखिए, लड़की बोली। उधर से आवाज आई, हाय, किस तरह देखूं तुमको? टेलीफोन पर तुमको कैसे देखूं? यहाँ आ जाओ ना। निर्मला खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, एक गरीब आदमी सहायता के लिए? अरे हम भी तो किसी की सहायता के पात्र है। सुपरिटेंडेंट उधर से इंद्रसभा के स्टाइल में बोला। निर्मला ने जरा बनकर और तनकर कहा, देखिए यह दफ्तर का समय है और तुमने खूब याद दिलाया। सुपरिटेंडेंट उधर से बोला, अभी अभी दफ्तर में हुक्म आया है कि दफ्तरों में काम करने वाली औरतें अगर शादी करेंगी तो उन्हें किसी समय भी नौकरी से अलग किया जा सकता है। बोलो अब क्या कहती हो? निर्मला बोली, मैंने शादी का इरादा छोड़ दिया है। उधर से सुपरिटेंडेंट ने संतोष की सांस ली, बोला, वह फिलिप्स का रेडियो सेट। जी धन्यवाद, मिल गया, मगर आप 2 मिनट के लिए इस गरीब से बात तो कर लीजिए।
1: कौन है?
0: एक गधा, सुपरिटेंडेंट ने एक जोर का कहका लगाया। तुम भी खूब मजाक करती हो, खैर भेज दो उसे भीतर। अगर गधा न भी हुआ तो भी उसके दोनों कान खींच कर उसे गधा बना दूंगा। जाइए, लड़की ने एक नाखून मुंह में दबाते हुए मेरी और बड़ी चंचल नजरों से देखते हुए कहा। कुछ इस प्रकार की, यदि गधे के बजाय मैं आदमी होता तो अवश्य ही उस पर आशिक हो जाता। सुपरिटेंडेंट मुझे देखकर पहले तो खूब हंसा, फिर उसने टेलीफोन उठाकर निर्मला के इस क्रियात्मक मजाक की प्रशंसा की। फिर वह जरा से आगे आया और मेरा कान पकड़कर बोला,
1: बोलिए मिस्टर डंकी, अब मैं क्यों ना आपको लात मारकर दफ्तर से बाहर निकाल दूं?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर।

0: ने कहा, आप मुझे नहीं निकाल सकते, इसलिए कि मैं आपके पास एक प्रार्थना पत्र लेकर आया हूँ। सुप्रिंटेंडेंट आश्चर्यवश लगभग मूर्छित हो गया। आखिर बड़ी कठिनाई से बोला, फिर कहिए आप क्या कह रहे हैं? मैंने दोहराया। आखिर बड़ी मुश्किल से यह बात उनकी समझ में आई कि मैं सचमुच बोलता हूँ। कहने लगा, आपकी वार्ता शैली तो मुझसे भी अच्छी है, इसलिए कि मैं लखनऊ के आसपास का हूँ और आप शायद पंजाब के हैं।
1: जी हाँ,
0: सुप्रिंटेंडेंट बोला,
1: मैं पिंड दादन का हूँ।
0: कुछ देर चुप रहने के बाद बोला,
1: फरमाइए क्या काम है?
0: देखिए, मैंने कहा, मैं सहायता मांगने आया हूँ।
1: आप शरणार्थी हैं?
0: नहीं तो?
1: तो फिर आप यहाँ क्या करने आए हैं?
0: सुप्रिंटेंडेंट ने जरा खफा होकर कहा, सहायता के लिए आया हूँ।
1: यहाँ केवल शरणार्थियों की सहायता की जाती है जो पाकिस्तान से लूट लुटा कर आए हैं।
0: और अगर कोई हिंदुस्तान में ही लूट जाए तो वो सहायता के लिए कहाँ जाए?
1: यह तो मैं नहीं बता सकता,
0: सुप्रिंटेंडेंट ने और भी खफा होकर कहा।
1: कम से कम इस विभाग में तो आप नहीं आ सकते, कोई और घर देखिए।
0: सुप्रिंटेंडेंट ने घंटी बजाई,
1: चपरासी ने मुझे बाहर निकाल दिया।
0: बाहर निकलते हुए फिर मुझे वही अलौकिक सुंदरी मिल गई। मुझे निराश देखकर बोली,
1: क्यों
0: काम नहीं बना? मैंने पूरी बात कह सुनाई। बोली, सुप्रिंटेंडेंट ठीक कहता है, अब तुम्हें डिपार्टमेंट और लेबर्स एंड इंडस्ट्रीज में जाना पड़ेगा। कहाँ पर है? उस अलौकिक सुंदरी ने दयावश मुझे पूरा पता दे दिया और मैं धन्यवाद कहकर पुनर्वास विभाग से निकला और लंबे लंबे डग भरता मजदूरों के विभाग की ओर चला गया। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्ण चंदर। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे फिर से मिलेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

0: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

पक्का पालन पूरी नहीं ओढ़ कितले ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ्य रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

0: भारत माटे विकसित गुजरात बनाविए, बार वर्ष विश्वास ना, विकास ना, जन कल्याण ना।
1: अरे बेटा, गई काले हूँ मारा भतीजा ना घरे गयो तो मारी तो आंखों फाटी गई। आखो दी एसी चालतू है, रोज वॉशिंग मशीन वपराय ने घर में बे बे फ्रीज, तो एनु लाइट बिल खबर छे केटलू आवे छे? जीरो। मैं पूछू तो भत्रीजो कहे के काका आ तो बधी ऊपर वाला नी मेहरबानी छे, एटले के छत पर लागेली सोलर पैनल्स नी। मैं विचार्यू हवे तो आपणे आ नंखाबूज पड़शे।
0: पीएम सूर्य घर मफत वीजळी योजना जोड़ावा माटे रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।